0: सर्व कला भरपूर दिसै जगता नानक दासन दास उदयोग बिनवता जी तेरा नाम सत है श्री वाहिगुरु।
1: सतगुरु सच्चे पातशाह दर्श कीता अपने बच्चे पासों कीर्तन जी हाजी प्रवाई कुटान शुक्राना सतगुरु जी संतान नु बेअंत माया हाजर करदे ने नाम जानी जान सतगुरु सभना दी मनोकामना पाउन दुनिया मार्ग जी सेवा लेखे चलाना हरद मैदान यात्रा

अंदर दिल्ली में शीशगंज काबगंज वाला साहेब बंगला साहेब सतो चंडिया साहेब जी दे सुख दे दर्शन दीदार मेले बला रे।

राग एक संग पांच परंगन संग अलाप है आठो नंदन प्रथम राग पहरो वै करही पंच रागनी संग उच रही।

पंचम हरख दिसाख सुनावहे बंगाल मदमा धोगावहे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पहात अष्टपुत्र पहराव के गावहे गायन पात्र द्वितीया माल का सक आलाप हे संग रागनी पांचौ थाप हे गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनाश्री ए पांचौ गाई माल राग कौशक संगलाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक उभारा खौखट अपहरानत गाए अष्ट माल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सोतम।

0: शेखर प्रताप दे दे मन बड़े प्रताप तीन लोग जय जय करे रे नाम समझा दोहरा
1: सकल द्वार को झाड़ गए गयो द्वार द्वार पाए गए किला जद गोविंदा दोहार दोहरा राज करेगा खालसा आके रहे ना कोई ख्वार हुए सब लेंगे बजे शरण जो उनकी सुबह मिले इसकी कर कुड़ा बसा डंका बाजे भले गाने कलंक अवतार चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुक्त है स्वयं बहुत सुबंग सर्वदा सब झुकते तू कालंक पनासी दे आलंक स्वरूप है सदा अंग संगे अभंग अंग भूते देखते गोपते नृसिंह वे दंगे आपते जनान गुरु गोविंद सिंह जी श्री काल वृद्ध सहाय दरबार में तेरो दरबारा सत्खंड उदय निरंकारा लक्ष्मी खड़ी तुम दे दरबारा सब देवते का नमस्कारा दोहरा नान गुरु

हरिय रोग हरिय सोग हरिय भरम हरिय कर्म हरि अजय हरिय भय हरिय भेद हरिय छेद हरिय खंड हरिय भंड हरिय दंड हरि।

हा भयो फांसी डार बूढ़ जोड़ तंग थार डार डार फांस डग मार मार डार ही डूबे नरक थार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही ताप के सहित जो बिपाई अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है जाप के कियत जो बिपायत अजाप देव भूत ना सदीव तुम।

जैसे एक धूर दे अनेक धूर पूरत है, धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कूट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते ऊन को करत भच, केते अच वछ हो सब पछ उड़ जाएंगे। केते नव बीच अच पछ को करेंगे भच, केते को प्रत्यक्ष हो पचा।

काल के बनाए सब काल ही जबाहेंगे। तेज ज्यों तेज मैं तेज जैसे तेज दीन ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगे। कूकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग बासी कित मदीना मक्का निवासी कित उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गढ़त कित सू पे चढ़त कित दुख को भरत है। गैन में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हर देवता विरोध हर दान बट बोध हर बोधक प्रबोध हर जापसी घास हर चंदन लगाए हर चो आचार बूझ हर पाहन चढ़ाए हर लापसी। गाह हर गोरन मनाए हर मड़ी मटली बहार भीतन लगाए हर छापसी गाय हर गंधर्व बजाए हर किन्नर सब पच हर पंडित तपन।

रंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग फेखंग न सतरंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदैव सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जो नियच्छयाद अद्वय जोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न शोकंग भय निर्विखादंग अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग बंडंग बंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भरणंग भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदैवं सदा सिद्ध विरधं स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तं प्रभादनुक्तं प्रतापय युक्तं गच्छयाद अविक्तय थापय विभुक्तं गच्छयाद अच्छय स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं ताकं न जातं न पातं न मित्रं न मन्त्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न वर्मं न सर्मं न साके न वर्मं न चर्मं न कर्मं न भागे न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आदरूपे नमो आदरूपे कहूं कंज के मंज के भ्रम भूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के वेश के धर्म थामे कहूं राज के साज के बाज थामे कहूं अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहूं सिद्ध

नेह गृह कहूँ देह दुखं कहूँ औखधि रोग के शोक सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बाने कहूँ जच्छ गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सातकी तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूम की भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जच्छ विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट के पृष्ठ के रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बाने कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारं कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बाणी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्धावस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राजसाजं कहूँ राजरीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश भाख्या कहूँ देववाणी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारं कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारं कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ वीन विद्या कहूँ गान कीर्तन कहूँ मलेच्छ भाख्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागवाणी कहूँ गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूँ छैल छाला धरे छत्रधारी कहूँ राज

जय सतरु मित्र नहीं जन्म जात, जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात, जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान, जय नेह गेह नहीं ब्योत बान, जय जात बात नहीं सतरु मित्र, जय नेह गेह नहीं चहन चित्र, जय रंग रूप नहीं राग रेख, जय जन्म जात नहीं भरम भेख, जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितर मात, जय नाम थाम नहीं बर्ग ब्याद, जय रोग शोक नहीं सत्र साध, जय त्रास वास नहीं देह नास, जय आद अंत नहीं रूप रास, जय रोग शोक नहीं जोग जुगत, जय त्रास आस नहीं भूम भुगत, जय काल प्याल कट्यो न अंग, अच्छा स्वरूप अखय भंग, जय नेत नेत उचरंत वेद, जय अलख रूप कथत कतेव, जय अलख रूप आसन अडोल, जय अमित तेज अक्षय अतोल, जय ध्यान काज मुंजन अनंत, कई कल्प जोग साधत दुरंत, तन सीत घाम बरखा सहंत, कई कल्प एक आसन वितंत, कई जतन जोग विद्या विचार साधंत, तत्तप पावतन पार, कई ऊर्ध बाह देशन भ्रमांत, कई ऊर्ध मध्य पावक झलंत, कई सिमृत शास्त्रत उचरंत वेद, कई कूक काव कथत कतेब, कई अग्नहोत्र कई पौनहार, कई कर्त कूट मृत को आहार, कई कर्त साक पय पत्र भक्ष नहीं, तदप देव हो वत प्रत्यक्ष, कई गीत गान गंधर्व रीत, कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत, कहूँ वेद रीत जग याद करम, कहूँ अग्नहोत्र कहूँ तीरथ धर्म, कई देश देश भाखा रटंत, कई देश देश विद्या बड़ा।

न रूप न रेख रुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भोग भुयं जे खेद न भेद न छेद छयं जे जात न पात न मात पितंग जे रचयं छत्रि छत्र चितं जे राग न रेख न रोग भणं जे द्वैख न दाग न दुख गणं जेहे अंडह ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पदाप प्रचंड लियो श्रे सिंधुरु बिंद न गिंद न कंसरे जच गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव देव अभिव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगं कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सेतज उत भुजंग किए देव देव सराध पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतं प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जे तात न मात न भ्रात सुतंग जे रोग न शोक न भोग भुअंग जे जंपह किन्नर जच जुअंग नर नारण पुंसक जाहे किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाजर थातक पांत गणंग भवभूत भविख भवान तुअंग जेहे अंडज सेतज जे रज रंग रच भूम आकाश पताल जलंग रच पावक पवन प्रचंड बली बन जास गियो फल फूल कली भू मेरा आकाश निवास चितंग रच रोज एकादश चंद्र वृतंग दुत चंद दिनी सह दीव दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोक चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव देव सच्चे अंधूत भूत अछूत मतंगन गाद व्याद अनाद गतंगन खेद अभेद अछेद नरंग जय चार चतुर्दश चक्र फिरंग जेह राग न रंग रंग न रेख रुखंग जे सोग न भोग न जोग जुगंग भू भंजन गंजन आदि सरंग जेह बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज वृतंग जेह पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेव अन

जय फोकट धर्म सभय तज है एक चित्त कृपा निध को जप है देव या भव सागर को दर है भव भूल न देह पुनर्धर है। एक नाम बिना नहीं कोट प्रति एवं वेद उचार तुसार सुती जो वारस के जस के रस है देव।

है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदैव सर्वसात है। अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदैव सिद्ध वृद्ध दा। अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिए सदैव सिद्ध सुथ दा प्रताप।

न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साहगो कुमार है। न नेह न गेह न देह को बनाव है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाव है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेत है न रूप है। न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाव है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाव है न रंग है न रंग राग है न रूप है न रेग है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अवेग है। न तात है न मात है अख्याल अखंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है। परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है। अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न सोग है न भेद है न भंड है। न अंग है न रंग है न संग है न साध है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है। न सीत है न सोच है न घ्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है। न छल है न छिद्र है न छिद्र के विभूत है। न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैख है न भेद है।

रहन आधन गाधन व्याध को विचार है। न रंग राग रूप है न रूप रेखरार है, न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है। गजाधपि नराधपि करंत सेव है, सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा। अगस्त आद जे बड़े तपस्वी विशेखिय, बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ बेखिय। अगाध आद देव के अनाथ बात मानिए, अजात पात मंत्र मित्र सत्र सनेह जानिए। सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रह, तुरंत द्रोह देह के अनंत भांत सोध है। त्व प्रसाद रुआ मल छंद, रूप राग न रेख रंग न जन्म मरण विहीन। आदनाथ अगाध पुरख सो धर्म करम विही, प्रधर्म करम प्रवीन। जंत्र मंत्र न तंत्र जाको आद पुरख अपार, हस्त कीट मिखे बस सब ठौर में निर्धार। जात पात न तात जाको मंत्र मात्र मित्र, सर्व ठौर मिखे रम्यो जय चक्र चिन्ह न चित्र। आद देव उदार मूर्त अगाध नाथ अनंत, आद अंत न जानिए अभिखात देव दुरंत। देव भेव न जानही जे मरम वेद कतेव, सनक ओसन केस नंदन बावी न सेव। जछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्ग पार, नेत नेत पुकार ही शिव सक्र अमुख चार। सर्व सबत बतार के दर्जा

राजा कवन हर सोग है कवन गोरो के रागी कवन कहूं तात महतवन दोहरा कवन सृष्ट को पुष्ट है कहां सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार।

डावरू डबंगे बबर बबंगे भुजा फरंगे तेज बरंग लंगुड़िया फांदे आयुध बांधे सैन बिमर्दन काल सुरंग अष्टायुध चमके भूखंड दमके अतसि झमके फुंग फनंग जय जय हुसी मै खासुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मुंड में मुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकन तुजा फरंकन फणी फुंकारन जोध जिते सरधार विवर खंड दुष्ट प्रखर खंड पुष्ट प्रहर खंड दुष्ट मथे जय जय हो सी मै खासुर मर्दन भूमा कासल ऊर्धे दामनी प्रहासन सुषम निवासन श्रेष्ठ प्रकाश।

अघ ओघ निवारण दुष्ट प्रजारण श्रेष्ठ उवारण शुद्ध मते फणि अरहंकारण बांग बकारण ससुरहारण साध मते सहति सन्नाहन अश प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय हो सीमा खास मर्दन भूमा काश पताल जलम चाचर चमकारण जिच्छुर हारण धूम धुंकारण द्रव मथे दाढ़ विप्रदंते जोग जयंते मर्ज मथनते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज

सुर नर मन बंधन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन भ्रत मथे कावरू कुमार समुधार नरक निवार आद कथे किंगणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण बितल तले जय जय हो सी समठौर निवासन बाय बताल कासन ले संगटी निवारण दम धारण तेज प्रकार खण धुंद तबे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आध अनाद अगाध अच्छे सुधता समर्पण तर्क वितर्कण तबत प्रतापण जबत जिवे जय जय हो सी सातुर प्रकार खण आद अनिल अगाध भे चंचला जखंगी अलग भुजंगी धुंद

प्रकाश उन्तरना से ज्योत प्रकाश अतुल बले दान वी प्रकार खंड सर्वर वर खंड दुष्ट प्रधर खंड वितल तले अष्टायत बाहन बोल निबाहन संत बनाहन गुड़ गते जय जय होसी मैं खासुर मर्दनाद अनाद गाथ वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना हे दुष्ट प्रता हे अर्दल गाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंते जय जय होसी मैं खासुर मर्दन साध प्रतक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहीली ज्योत जतीली धुंध मते अष्टायत चमकण सहस्र चमकण।

चसरासुर मारण नरक निवारण पद दो धारण एक फटे पापान बिहंडन दुष पचंडन खंड अखंडन काल कटे चंद्रानन चारे नरक निवारे पद दो धारे मुंड मथे जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन धूम्र विधुंसन आत कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्रदन दान वर्दन बिडाल मधे सरदार विपरखन दुर्जन धरखन अतुल अमरखन धर्म धुजे धूमराज विधुंसन सोनत चुनसन सोमन।

अरे पछ पशु नग नाग नराधिप सर्व समय सबको प्रतपार भूखत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानित दोखन देखत है पर देत नहार दाहत है दुख दोखन कौदल दुजन के बल मैं दल डारे खंड खंड प्रचंड बहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार पार न पाए सके पदमापत वेद कते भेद उचारे रोज ही राज विलोकत राजक रोग रोहान की रोज नटारे कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अहंगेव न वेव लख्यो भ्रम सियो भरमाए वेद पुराण कतेब कुरान हसेव थके कर हाथ नाए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पत स्यो किन श्री पदमापत पाए आद अनंत अगाध द्वेक सो भूत भविख भवान अभय अंत विहीन अनाथ महाबादांग अधोक छिद्र छह लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रभ है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त गेह अच्छ है जान को देद अजान को देद जमीन को देद जमान को दह है काहे को डोलत है तुमरी सुध सुंदर श्रीपद मापत।

अपनो कर दे कर पाव समूह न फेटन पावे। और की बात कहा कह तो सो सो पेट ही के बड़ बीच बचावे। जाच भुजंग सो दानव देवा भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूम आकाश पताल रसातल जाच भुजंग सब सिर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत वेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रोमनारिक से सब हो मिल गायो। वेद कतेब न वेद रखियो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनात सनातन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद निर्पाण सब बचहारे। भेद न पाय सक्यो अनभेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे। आद अनाद अगाद वेख अद्वेख जप्यो तिन्हि गुलतारे। तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिरे कर भेष तपोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे वो न्यास करे मुकारे। दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत को अंत के धाम।

अत्र के चलैया छत्र छत्र के धरैया छत्र धारियों के छलैया महासत्रन के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्ध ता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न बार पव हिंगुला हिमालय ध्यावे गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे अरब के अरबी अराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी गुरे से जाने पछम के पछमी पछान निज काम है। मरटा मंगेर तेरी मन सो तपस्या करे दृढ़ वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगावारी दिल्ली के दलवाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहले मांग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीस ने आवे तिब्बत आए दुख देह के दलत है। जिन्हें दोहे ध्याय तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सुफलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग दान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साधा दीन कहियत है। पाइये न पार दिज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की बुकार बल पाछे पहुंचत ताहे चिड्डी की चिंगार पहले ही सुनियत है। केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुख चार केते कृष्णावतार केते राम कहियत है। केते ससरासी केते सूरज प्रकाशी केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। केते महादीन केते व्यास ब्रवीन केते कुमेर कुलीन केते जश कहियत है। करते है विचार पैना पूर्ण को पावे पार ताहिते अपार निराधार लहियत है। पूरा अवतार निराधार है न पारावार पाइये न पार व अपार के बखानी है। अद्वय अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के मानी है। जंत्र हूँ न जात जा के बाब हूँ न मायता की पूर्ण प्रभा की सुछटा के अनुमानी है। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र के जानी है। तेज हूँ को तर है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना की शान है विरक्तता की बान है।

गनी मन को गारक है, साधन को रचक गुण को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रोध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है। काम को गुनिंदा है के खूबी को तिहंदा है, गनी मन करिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूँ के काल है के सतरण के साल है के मित्रन को बोकत है के वृद्धता की बासी है। जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुध को प्रकाश है के सिद्धता को बास है के बुध हूँ का घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है, अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचैया है मान को दिवैया है, जमजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है, महीपन को मंड है के श्री है नर है। विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाई है न पार पार अवार हूं को पार, जग की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय गावे है वसी हल विधावे, पूर्व बिना पार बावे असत अनास है। देवन को देव महादेव हूं के देव है, निरंजन अभेव नाद अद्वय अविनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है, सेवक अधीन है कटैया जमजाल के। देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ, भूम के भुजैया है मोहैया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है धरैया द्रुमछाल के। कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। छीर कैसे छीरा वध छाज कैसी छतरा नेर, छपा कर कैसी छप कालिंदी के गूल के। हंस निश हरुम हीरा सी हुसैन बाद, गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के। पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर, सूरासी सुरंगाबाद नीके रही झूल के। चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदगढ़, कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के। फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर, सीसा सी सुरंगाबाद नीके सोहियत है। हिमासी हिमालय हर हार सी हलपा नेर, हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर, चांदनी सी चांदगढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंगधार बकान सी विलंदावाद, कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासी इसके दुरंगी, मकरान के बृदंगी तेरे गीत गाइयत है। बखरी गंधारी गोर गखरी गर्दे जचारी, पौन के हारी तेरो नाम ध्यायत है। पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ, सर्वठौर में विराज जहां जहां जाइयत है। पूर्ण प्रतापी जंत्र मंत्र तेता बिना तकीर।

महाराज जी ने कहा ते अजय खालसा जेड़ा ना जेड़ा आज जेड़ा है आज ता छोटा है आज ता बच्चा है एक खालसा जिस तरह बच्चा जेड़ा प्यारियो वो सब शक्तियां उदे अंदर होंदियां लेकिन एक समा चाहिदा है ओही समा वो बच्चे नू मिल जावे ओही बच्चे अगे वध करके राजे महाराजे महाबली बनदे हन। सो महाराज ने कहा अज और सारी ऊर्जा ताकत साढ़े सिखां दे विच खालसे दे विच है लेकिन खालसा छोटा है अगे जा करके समा जिस तरह बच्चा जो उम्र बढ़ती है उसकी ताकत विच भी इजाफा होंदा इस तरह गुरु का खालसा भी बहुत ज्यादा वधेगा इहदा तेज प्रताप भी बड़ा वधेगा। यह एक गल याद रखो प्यारियो आ पिपल का दरख्त जिहड़ा होंदा ना यह पिपल का दरख्त प्यारियो कई बारी आप जी ने वेख्या होगा पत्थर दे विच आवे पत्थरां नूं पाड़ के रख दिंदा यह दरख्त प्यारियो कंधां दे विच लग जांदा कई बारी आपने वेख्या होवेगा छतां दे उत्ते कंधां दे उत्ते लग जावे ते यह प्यारियो छेती करके नहीं मरदा ते एक बारी इहदियां जड़ावां यह हो जाण ते यह दूजे दरख्त नूं अपने हेठां पनपण नहीं दिंदा उहनूं अपने विच ही मिला लैंदा। बहुत सारे प्यारियो इहो जिहे दरख्त जिहड़े हन कई बारी तां वेख्या जांदा प्यारियो पांच पांच दरख्त जिहड़े इको उहदी प्यारियो ठूठ जिहड़ा हुंदा है उहदी जड़ जिहड़ी है मुख जिहड़ा पेड़ा जिहड़ा हुंदा इक हुंदा उहदे उत्ते चार चार पांच पांच दरख्त आए ते खास करके पिपल का दरख्त ता ही तो इहनूं देव दरख्त बोलदे हन ये प्यारियो किथे आ जावे ना छेती ये निस्तो नबूद नहीं हुंदा ते दूजे नूं अपने हेठां दबा लैंदा। कई आपने वेख्या होवेगा कि भाई आ जिहड़ा निम का दरख्त उहदे उत्ते पिपल आ गया कई बारी प्यारियो बोड़ दे दरख्त दे उत्ते आ जांदे हन कई बारी कोई दूजे तीजे दे उत्ते इस तरह प्यारियो जंड का दरख्त सी ते फिर यह पिपल का दरख्त और एक गल याद रखण वाली है कोई भी पंखेरू जदो एदा बीज खा करके जदो प्यारियो उहदी विठ करदा उहदे विठ दे विचों ही प्यारियो आ जिहड़ा बूटा पेड़ा जिहड़ा जन्म लैंदा समझ लिओ किसे पंखेरू ने यह जिहड़ा इहदे बीज खा करके पिपल दे उहने किसे दरख्त दे उत्ते विठ

जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, धृग जीवै धृग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लखास, धन धन सत संग।

जग मह सो खवासी से मुकत भय जिन हर ध्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निर्भव जिन हर निर्भव ध्याया जी तिन का भव सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी।

रच दीनी, काहूं फूल राजा हुए बैठा, काहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेच्छ करो रणगाता, जे अस दुज तौ शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार धिए हैं, ताके काल निकट न है, रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्टन जाए निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रिद्ध सिद्ध घर मु सब होई, दुष्ट छा छुए सकै न कोई,

सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावै दुख पाप तह निकट न आवै बिशन भगत किए फल होई आद ब्याह छुए सकै न कोई सम सतरै सह।

ऐसे चरित्रता ते जुन प्रिय प्रताप तिन लोक जय जय कर रे राम सुजा दोहिरा सकद्वार को छाट के कहे द्वार ओ द्वार बहन के राजा सुख बिंदास द्वार दोहिरा राज करेगा खालसा की रहे ना कोई द्वार ओ सन के बच्चे संजो होए उड़ गई सभा बने की कर कुड़ा पासा रंगा बजा दे ताने कम कवता छत्र चक्रवर्ती छत्र चक्र पुते स्वयं बहु सुंदर दास जूते दुकान प्रणा से दयाल सुपे सदांग संगे आप हम विभूते दे गोपते निष्ठ पे दुनिया पुत आज नान गुरु गोविंद सिंह श्री अकाल पुरी सहाय दरबार में तुरु दरबारा सचखंड से निरंकारा लक्ष्मी प्रीत तुमरे दरबारा सजते नमस्कार दोहरा नान गुरु गोविंद सिंह जी पूर्ण अवतार जगम जोत विराज श्री अचल रापा